मिलजुल नहीं जोने ने वाई साह की वाई साह के चार वाई साह खलने वाले खेल वाले बंदी में सुरंगा सुरंगा से बिजली जफल लग फिर भी छूट मेरा मुन भी से पाम मुन सब मुन दोया गर उपुल उपुल में ना कुपी से गई खाया मुन भी से मुन मामुन दोया उपुल गर को उपुल लुप भी से दखार उपुल लामुर को डॉलर से नगार था मुन Mamma, who I bought, what would look over in the color of your mother? Look on me, the color of the net, and then you have a new one. I mean, that was our sweet and mood.